0: रहने दे भाई, हमेशा कैंसिल होते हैं तेरे प्लान।
1: बहुत चीजें होती है लाइफ में, तुम्हारी तरह भाई फ्लैट पे नहीं रहता हूँ मैं, घर पे रहता हूँ, बहुत चीजें देख के चलनी पड़ती है। और नहीं है भाई मेरे पास पैसे अभी, नहीं है रिसोर्सेज मेरे पास अभी घूमने के लिए।